रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर इस 1 घंटे के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आज 27 मई है। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश के आह्वान से करें।

देवा गणेशा, इसे गाया था अभिलिप्सा पांडा ने और इसके बोल लिखे थे प्रीतिका दीक्षित ने, इसका संगीत दिया था और प्रोड्यूस किया था रोहन पुंताम बेंकर को। आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर, और मैं हूं आपका प्रस्तुतकर्ता अरविंद गुप्ता। मित्रों, 31 मई को एंटी टोबैको डे है और जून में 1 को पड़ेगा वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 2 को लीव द ऑफिस अर्ली डे एंड अमेरिकन इंडियन सिटीजनशिप डे, 3 का है रिपीट डे एंड वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 6 का डी डे एनिवर्सरी, 7 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 को वर्ल्ड ओशंस डे, नरसिम्ह जयंती और नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे। मित्रों, नेशनल रिकंसिलिएशन डे एंड वीक पड़ता है 27 मई से लेकर 3 जून तक। नेशनल रिकंसिलिएशन वीक 2026 विल बी हेल्ड फ्रॉम वेंसडे 27 मई टू वेंसडे 3 जून 2026। दीज डेट्स रिमेन द सेम ईच ईयर, कमेमोरेटिंग द 1967 रेफरेंडम एंड द 1992 मावो डिसीजन, marking a time for all Australians to learn, share and act on reconciliation. The theme for this year is All In for Reconciliation. But this week celebrates milestones in the reconciliation journey and focuses on building respectful relationships between the wider Australian community and Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Various events, including workshops and cultural immersions, are typically scheduled across the country during this week, including at schools, workplaces and community centers. Iske key points kya hain? National Reconciliation Week held between 27 May and 3 June each year. The start and end dates mark major milestones in the First Nations history. Bridging now to next is the theme, and for this year's week of celebrations.

0: ये था मराठी फिल्म एकता एक पावर का टाइटल गीत। इसे गाया था नंदेश उमप और नेहा राजपाल ने। इस गाने को कंपोज किया था सलील अमृते और लिरिक्स लिखे थे के विलास ने, और इसके प्रोड्यूसर हैं अश्विनी सीरसत, म्यूजिक डायरेक्टर सलील अमृते। मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी, जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है, पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर। मैं हूं आपका प्रस्तुतकर्ता अरविंद गुप्ता। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल रिकंसिलिएशन वीक पर और नेशनल रिकंसिलिएशन डे पर, और साथ ही में रिकग्नाइजिंग द स्टोलन जेनरेशंस। तो राष्ट्रीय सुलह सप्ताह की उत्पत्ति किस तरह से हुई? हिरासत में आदिवासी मौतों पर रॉयल आयोग ने 1991 में संसद को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट की एक सिफारिश राष्ट्रीय सुलह की प्रक्रिया की शुरुआत थी। वहां से संसद ने आदिवासी सुलह अधिनियम के लिए परिषद पारित की, जिसने आदिवासी सुलह परिषद CAR की स्थापना कर दी। कानून के तहत CAR एक दशक तक एकजुट ऑस्ट्रेलिया की दृष्टि से काम करेगा, जो भूमि का सम्मान करता है, आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर विरासत को महत्व देता है और सभी के लिए न्याय और समानता प्रदान करता है। परिषद में 25 सदस्य थे, जो स्वदेशी और गैर स्वदेशी दोनों थे। पूर्व लेबर सेनेटर यावरू निवासी और सुलह के जनक पैट डॉटसन उद्घाटन अध्यक्ष थे। 1997 में स्वदेशी अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर एवलिन स्कॉट ने इसका पद संभाला। 1993 में सुलह के लिए प्रार्थना का पहला राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। 3 साल बाद समर्थन का विस्तार हुआ, इसलिए CAR ने देश का पहला सुलह सप्ताह शुरू किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड और गवर्नर जनरल सर विलियम डीन सहित विभिन्न गैर स्वदेशी नेताओं को CAR की अंतिम रिपोर्ट, सुलह की दिशा में ऑस्ट्रेलियाई घोषणा और सुलह के लिए रोडमैप, इसने तर्क दिया कि केवल एक दशक में ही एक सुलह वाला राष्ट्र हासिल नहीं किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शीर्ष निकाय रिकंसिलिएशन ऑस्ट्रेलिया की स्थापना कर दी गई।
1: So this song about just called Move It On talks about those times. 1, 2, 3.